नमस्कार, सुप्रभात। FM 96.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानुं आ अमदावाद केन्द्र छे। आजे मंगळवार अषाढ़ मासनी दिनांक 23 शक संवत 1948 तारीख 14 जुलाई सन 2026 સવારના 5:58 થઈ ચૂકી છે। અમારી આજની સભામાં આપનું સ્વાગત છે। પ્રારંભ કરીએ મંગલ ધ્વનિથી।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एक

0: एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG की पुनर्परीक्षा की OMR शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी OMR शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। OMR चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: 96.7 FM पर आप सांभळी रह्या छो विविध भारतीनुं अमदावाद केन्द्र। प्रस्तुत छे भक्ति संगीतनो कार्यक्रम अर्चना।

भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी

0: कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है, इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्या धनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्या धनाश्री का जो सप्तक है वो नीरे गा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसा रेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्याधनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती ज़रूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुनें ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।

गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसे हमने छोटे बाबू फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज़ें थीं, इंदिवर की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत सुना। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। उनकी भावपूर्ण और मधुर धुनें हमारे दिलों को सदैव हमेशा आकर्षित करती हैं। ये कर्णप्रिय संगीत हमारी अमूल्य धरोहर है। सुनते हैं ये गीत।

संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।

0: पुल्ला पुक्को पुल्लो
1: गोला, अरे तू क्या है?
0: मैं का गोला।

मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था रंगीन रातें फिल्म से था। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी। केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयो मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षो वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत इस गीत से।

कहाँ हो तुम, जरा आवाज़ दो, हम याद करते हैं। मल्हार फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। कैफी आज़मी ने बोल लिखे थे और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था। नमन है संगीतकार रोशन को, जिनके गीतों की ताजगी, भाव और मिठास दिल को छू लेते हैं। अगला गाना बरसात की रात फिल्म से, लीजिए सुनिए।

जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार साहिल लुधियानवी थे और संगीतकार थे रोशन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में चित्रलेखा फिल्म का गीत। शब्दकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चित्रलेखा, साहिल लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा

0: अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्य वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और

0: रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर-21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार

0: को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, SIT से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है, हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है, आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

यहाँ की खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है। शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो है कि समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल छे तो आपनी चाहिए, चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए, रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षो वाविए, चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
3: विशेष जयमाला दर बुधवारे अने शनिवारे सांजे 7 वागे, प्रायोजक देवदर्शन धूप अगरबत्ती।

भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें श्रेया घोषाल, जावेद बसीर की थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था। शंकर एहसान लॉय ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लुटेरा फिल्म का ये गीत।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज मोनाली ठाकुर की थी, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी

0: पसंद के गाने
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

श्रेया घोषाल और एमजे श्रीकुमार की आवाजों में समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे प्रीतम और फिल्म का नाम था भूल भुलैया। ये है गुरु फिल्म का गीत।

0: हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज़ों में गुरु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार थे ए आर रहमान।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद फिर से सुनिएगा।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गाना। नेहा कक्कर और साथियों की आवाजें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाज़त सविता सिंह को। नमस्कार।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

सन 1948 में रोशन मुंबई चले आए और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक हो गए। खुर्शीद अनवर उन दिनों फिल्म सिंगार को संगीत से सजाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान

रोशन की भेंट हुई फिल्मकार किदार शर्मा से, जिन्होंने सन 1949 में रोशन को अपनी फिल्म नेकी और बदी के संगीत निर्देशन की कमान सौंपी। हालांकि फिल्म नेकी और बदी असफल रही, रोशन को अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति का रास्ता मिल गया। इसी दौरान उन्होंने फिल्म बावरे नयन में संगीत दिया। बावरे नयन के निर्माता थे गायक मुकेश।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल छे तो आपनी चाहिए, चालो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए, रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयो मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षो वाविए, चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
3: આવી રહ્યું છે મર્દ ફિલ્મનું ગીત, શબ્બીર કુમાર, એસ જાનકી, અમિતાભ બચ્ચન તથા કેતન દેસાઈના સ્વરમાં સંગીત અનુ મલિકનું।

सुना क्या लड़की बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।

0: गॉड को सलामी देना जरूर फिर जाना उसे मिलने।
1: गोगा, ये फादर का बच्चा कौन है?
2: फादर के बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

0: गाए जा।
1: सुन रुबिया, तुमसे प्यार हो

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज

0: સાંભળતા રહેજો વિવિધ ભારતી.
1: आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने. पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खां के बोल.

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज़ में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएँ होती है। संगीत गज़ल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहाँ कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी

याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गज़ल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज़ है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज़ में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता, संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्लाह क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्लाह क्या बात है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया यह गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहाँ कंप्यूटर से संगीत बनता है, वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहाँ कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियाँ कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं। ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं। इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गज़ल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और से मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में एक बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहाँ सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत ज़रूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है, मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरत को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखी थे, रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं, हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूँगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गज़ल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोज़ाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना।

दिल ही तो है इस फिल्म का, ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की

आवाज़ें, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति
0: डोनाल्ड ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को

0: निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम ज़ोल्फ़ाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और IT आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और

हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और

0: आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से

0: और बिना किसी परेशानी की हो सके। नवजौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट यायार न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: હવે સાંભળીએ જગજીત સિંહના સ્વરમાં એક ગીત, ગીતકાર તથા સંગીતકાર શ્યામલ સૌમિલ મુનશી.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षो वाविए। चालो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: सांभळीए विभा देसाईना स्वरमा आ गीत।

0: हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: कार्यक्रमना अंते सांभळीए शोभा जोशीना स्वरमा एक गीत, संगीत क्षेमू दिवेटिया।

0: विविध भारती पर अगला कार्यक्रम है सखी सहेली। आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन, धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं, तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार

0: करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ,
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं।
1: हाँ,
0: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हज़ार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे,
0: बातों में लगे
1: और वहाँ आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो ज़रूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज़ रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा
1: जी
0: जहां हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और एक कि उनका इंतजार होता है हम।
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है, ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें, अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था, तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे, या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते थे,
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: थे, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नज़रें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहाँ भी नज़रें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आँख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है।
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते, तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल,
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नज़र मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नज़रें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में, लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े

0: अच्छे लगे।
1: जी ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं। हाँ। जो वो उन्होंने एक काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
0: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहाँ। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है
1: और सही लिखी है ना। वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पर आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या

0: रात के भोजन के समय, जैसा अभी आपने कहा,
1: हाँ,
0: हम सब बैठकर बतियाते थे
1: हाँ,
0: हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज़ भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल

0: में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे ऐप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज ऐप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीज़ों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई हैं।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज़्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक दीप दर्शन, धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: मंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई, तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज़्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज़्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूँ अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती हैं ना वो सभी चीज़ें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहाँ काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती हैं खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो चंचल बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं, और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: बिल्कुल, इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब हैं, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
0: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी

0: यह तो एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम ज़रूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहाँ भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग ये सभी जो चीज़ें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ हैं कि नहीं, बनाने के तरीके साफ हैं कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है इन दिनों में मक्खियाँ बहुत हैं, तो मक्खियाँ जब खाने पर बैठती हैं तो वहाँ अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक शोधा लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीज़ों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत ज़रूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई इन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीज़ें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताज़ा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीज़ें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीज़ों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताज़ा तेल,
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय

0: ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये जो पिज़्ज़ा, हाँ, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीज़ों, हाँ, से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाज़ार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियाँ उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताज़ी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फ़ायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रहे थे कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाएं, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये हाँ। एक ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण इन्होंने देकर समझाया है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं। हाँ। पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है, और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा अच्छा वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना, हम कॉपी में
1: उदाहरण देकर समझाइए,
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार हम तक पहुँचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता हैं वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी
0: कि
1: बिल्कुल
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई, एंड आई जॉइंड द

0: थिंग, मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहाँ पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था, मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था।
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का।
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा,
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी,
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया, उनके लिए सब सेम थे।
1: सब सेम।
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले।
1: अच्छा।
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार।
1: जी, जी।
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी।
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है।
1: अच्छा।
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी।
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं।
1: अच्छा।
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक।
1: अच्छा।
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं। तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो लेकिन नहीं, ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लाइक कि ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ।
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है
1: जी जी,
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला हाँ गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है।
1: जी जी जी।
0: तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कुछ उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ।
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ
1: जी।
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती करते हैं कि, तो उस पर मुझे लगा ना कि इसमें बापू बोलना चाहिए।
1: हाँ।
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो, महात्मा बोल रहा है मगर हाँ,
0: अब जो तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली अरे करना यार काइंड ऑफ, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो। हाँ। थोड़ी मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है।
1: हाँ।
0: ठीक है, ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा

0: चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है। बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा, हाँ,
1: हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम है
0: शोज करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी।
1: अच्छा।
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले।
1: हाँ।
0: बट वो आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा।
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बम्बई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था, तो मैं वहाँ पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता, और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं
0: जी सर।

0: दो लफ्ज़ों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्ज़ों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: होती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम
0: कॉलेज
1: किया।
0: के ज़माने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका
1: वही
0: है,
1: नाइस।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का। आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो
0: पढ़वाते
1: शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये
0: है
1: छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहाँ जहाँ परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं,
0: जी
1: दूसरी
0: जी
1: बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं
0: है।
1: आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है
0: जी। और उसका जो भी
1: तुरंत
0: रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है।
1: तुरंत। यू फील सो गुड कि
0: हाँ
1: जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
0: हाँ
1: मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छः छः दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें, डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक करेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में, तो
0: जी
1: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल
1: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप
1: हाँ
0: राजकुमार संतोषी साहब से जब

0: खेलने गए और वो घर पे नहीं थे, तो उनके सेटआउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहाँ मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खन थे,
0: जी
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
0: हाँ
1: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहाँ चला गया। वहाँ पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
0: अच्छा
1: और वहाँ मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहाँ पे लिखी। 5-6 दिन में वहाँ पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहाँ भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी है उस
0: तो ये
1: टाइप
0: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: में। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
0: जी
1: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी जी
1: जो शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324, और वो जरूर बगल में। पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
0: जी जी
1: है, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह क्या
1: या
0: बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गामा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहाँ पे वो रिलीज हुआ है, तो वो हमने किया। वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया
0: जी
1: और
0: जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: तो चलिए
1: हालांकि
0: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे। और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
0: अच्छा
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान।

0: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
1: अच्छा
0: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
1: अच्छा
0: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब,
1: अच्छा
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
1: जी
0: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
1: अच्छा
0: अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? ही सेड, नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे।
1: हाँ
0: तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
1: अच्छा
0: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूँ, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूँ,
1: बिल्कुल
0: मतलब मैं परफॉर्म कर लूँ, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
1: बिल्कुल
0: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है।
1: हाँ
0: सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
1: जी जी जी
0: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
1: अच्छा
0: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
1: जी जी
0: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
1: जी
0: प्रोजेक्ट मेरे
1: जी
0: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
1: क्या बात
0: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
1: अच्छा
0: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी, और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वो वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा दिखाएंगे।
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कैरेक्टर अच्छा था, जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था, और मैं
1: हाँ
0: हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज़्यादा महत्व देता हूँ, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो,
1: जी जी
0: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
1: अच्छा
0: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ,
1: हाँ
0: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा, गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन,
1: कई
0: तो
1: शेड्स हो
0: कई
1: सकते
0: शेड्स हो सकते हैं।
1: जी
0: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है,
1: अच्छा
0: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी, जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
1: हाँ
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू
1: जी
0: स्टोरी थी,
1: जी जी
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है,
1: ओह
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था। लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था,
1: जी
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। तो
1: अच्छा
0: बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स, और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल,
1: अच्छा
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही
1: जी जी जी
0: दैट वे।
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी
0: जिसमें

0: एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही।
1: हाँ, मकरन देशपांडे
0: मकरन जी थे उसमें,
1: हाँ, पर वो फिल्म आ गया।
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें हाँ, साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी, जी, जी।
0: और ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ,
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन।
1: हाँ
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो, और
1: हाँ
0: फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत।
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग-अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं? आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूँगा।
0: जी
1: तो सबसे ज़्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी।
1: मैं एक साइड बनाता रहूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा

0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
1: जी,
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
1: जी।
0: मैंने वागले के बाद में अभी, वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
1: जी,
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
1: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी,
0: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
1: अच्छा,
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
1: ओहो, क्या बात।
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से,
1: वाह वाह।
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
1: यही गाना
0: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जान से लड़ते हैं
1: जी,
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो आपको भी मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी, दुर्भावनाएं जो होती हैं
1: दुर्भावना
0: वो भी हमारी दुश्मन है।
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता
0: जी
1: है,
0: जी
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे
0: जी
1: आर देयर टू हेल्प मी।
0: जी
1: आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीज़ों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल।
2: विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है,
1: जी
2: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए।
2: जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
2: हाँ
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है,
2: अच्छा
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
2: हाँ
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
2: जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
2: जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं,
1: जी
2: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसी के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूँगा।
2: हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSD, FTI, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं थी।
2: हाँ
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
2: जी।
1: एक कलाकार की ज़िंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
2: हाँ
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ,
2: जी
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज़, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ।
2: जी।
1: बाकी बहुत सारी चीज़ें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफ़र रहा है,
2: हाँ
1: जो कि दूर से देख के ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
2: वाह
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
2: जी।
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
2: जी।
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं हम बचपन से।
2: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
2: हाँ
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ाए तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते।
0: ओह
1: तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में,
0: हाँ,
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 female, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त

0: असिस्टेंट डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया. ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया. बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊँ कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए. और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी.
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे.
1: क्या बात,
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है. अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा. तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं.
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग. ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं. तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो,
1: अच्छा
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो. संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है.
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही. लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे. जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है. इट इज विथ मी,
1: अच्छा
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है.
1: जी, जी.
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम. विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं. और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊँ जितना मैं कर सकता हूँ. मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से. और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं. और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं.
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं.
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो.
1: हाँ,
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है. लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे.
1: हाँ,
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं,
0: महत्व नहीं है. तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास.
1: हाँ, हाँ.
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा. शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा.
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं. तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है.
1: जी जी जी.
0: तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए.
1: क्या बात है, क्या बात है.
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था.
1: क्या बात, क्या
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे. तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है.
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं
0: जी.

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। हर रोज रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों मा कांप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: વિશેષ જયમાલા દર બુધવારે અને શનિવારે સાંજે 7 વાગે, પ્રાયોજક દેવદર્શન ધૂપ અગરબત્તી।

जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।

जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हरिहरन और साथियों की आवाज़ों में, गीतकार हैं पीके मिश्रा, संगीतकार हैं AR रहमान, फिल्म का नाम है रोजा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ
0: गया एक और आ गया।
2: गई। चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप
2: हैं?
3: काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है मेरा साया।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं मदन मोहन, फिल्म का नाम है चराग।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: साथियों जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस मा रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों मा काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद मा कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना है मदन मोहन की, और फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।

0: अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, नगमा दिगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं मदन मोहन और फिल्म का नाम है लैला मजनू।
1: अब अगर हम

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है मल्हार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

बाज आए ऐसे फैशन से। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको नाज़नीन का लिखा ये प्रहसन सुनवा रहे हैं। इसके निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे ओ भाई रेहाना, ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
1: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में ही हूँ, फिर भी यूं चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
0: इसमें वो रेजर नहीं है।
1: उसे तो मैंने फेंक दिया।
0: फेंक दिया? लेकिन क्यों?
1: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
0: क्या मतलब?
1: अजी वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
0: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और वहाँ तुमने फेंक दिया।
1: जनाब आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
0: जी
1: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप हैं कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
0: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का आप क्या होगा?
1: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर। मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
0: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरस डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बना ही ऑफिस जाना पड़ेगा।
2: अपनी है दुआ बन के तमन्ना।
0: चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ।
1: कहो कैसा था रेजर, शेप ठीक से बनी कि नहीं?
0: हाँ ठीक बनी। अरे कम्बख्त ने गाल को जगह जगह से काट कर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो
1: नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखना इसे कमाल। ये लो
0: लो
1: चाय पी लो।
0: अरे ये कब कहाँ से आ गया?
1: कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
0: लेकिन
1: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
0: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था।
1: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
0: अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो।
1: इसमें बहस कैसी, वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चुल्लू जैसे मुझे एक आंख भी न भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारी शर्म की मैं तो पानी पानी हो गई।
0: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
1: तो और क्या करती, एक बार तो ना कर गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बची खुची नाक कटवाऊं?
0: जी नहीं, कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखिए, भले मैं कंगाल हो जाऊं। हां
1: तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसों से थोड़े ही खरीदा है।
0: तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खाला जान खरीद के दे गई है?
1: हटो भी, अल्लाह ना करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
0: क्या मतलब, जहाँ तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
1: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी।
0: क्यों, क्या हो गया था उनमें?
1: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे। उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना?
0: हाँ, देखा
1: था। कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
0: मखमल के आगे टाट। क्यों?
1: हाय तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: लेकिन मेरी अच्छी बेगम, मेरी अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी शर्ट पर भेंट चढ़ा दिया?
1: अरे वो 24 इंच की मोरी वाली पतलून में थी कि गरारा, अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और उन्हें कब घर से बाहर निकालूं।
0: बहुत खूब, भाई खाला जान ने टी शर्ट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल फेंकने का। भाई बहुत अच्छे, कल आपके कोई चचीजान मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल लेना और कोई नया शोहर ले आना घर में।
1: क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो, जरा सोचो इन बेकार और पुराने फैशन के कपड़ों से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई।
0: काम की चीज? वाह, जितनी कीमत की बुलबुल नहीं उससे ज्यादा की उसकी उड़वाई।
1: ओफो, एक तो इतनी किफायत से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफें करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं किफायत शुवारी के। देखो रेहाना, तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ
1: ओफो, खुदा जाने तुम कब समझोगे।

0: सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन करके आ जाऊँ, तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट?
1: नहीं नहीं, अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है। वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे। फिलहाल ये लो, इसे पहन कर जाओ ऑफिस।
0: ये?
1: हाँ,
0: ये पहन कर जाऊँ?
1: हाँ पहन कर देखो, मजा आ जाएगा।
0: ये सूती पैर पहन कर ऑफिस जाओ?
1: ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जीन्स।
0: इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से, मैं यह जीन नहीं पहनूंगा।
1: क्यों नहीं पहनोगे? पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाई जान तो इसके चक्कर में पड़ोसी देश तक जाते हैं, और
0: वो इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या, तुम उन्हीं को यह सारंगे का गुलाब पहनाना, समझी?
1: आखिर इसमें बुराई क्या है?
0: एक हो तो बताऊं, भला ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी, सिलाई तो यूं लगी है जैसे चींटियां रेंग रही हो, और तो और जगह जगह से रंग भी उतर चुका है।
1: जवाब नहीं तुम्हारा अजी, यही तो इन पैंटों की खासियत है।
0: यानी रंग उतरना?
1: जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं फेडेड जीन्स। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी।
0: हद खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान।
1: बस ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ।

0: स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
1: बस अब रहने दो, इस मार क्या खाक लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, वो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
0: अब ज्यादा दरकनूसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
1: लंच और इस बालिश भर के डिब्बे में?
0: हाँ आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
1: क्यों, मेरा वो चार कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
0: कुछ तो अगर से काम लो, भला इस पैंट के साथ वो घंटा घर मार का कटोरदान मैच करेगा?
1: लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
0: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं, और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
1: क्यों?
0: टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडॉल हो जाता है।
1: अच्छा बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
0: ये रहे।
1: ये क्या है?
0: जूते हैं और क्या है।
1: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
0: अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेजर पुमा जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
1: लॉन्ग बूट?
0: जींस पर यही पहने जाते हैं।
1: सुनो रेहाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
0: उफ, वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
1: अच्छा बस बस, नया फैशन नया फैशन, ला घर जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी, या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
0: उठो, कोई बात नहीं, पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
1: आदत क्या बन जाएगी?
0: हाँ।
1: टूट गया,
0: प्लीज उठो।

0: ने मुझे बुलाया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन। हाँ हाँ आ जाओ, देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिर ये चुड़ैल है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: अरे चल हट कल मुही, बड़ी आइडिया और डार्लिंग वाली।
0: ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।
2: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पर आए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये दिकोरी कौन है?
1: अरे भाई ये लैला है। लैला,
2: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
1: मेरा ताल्लुक? मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महमाल से था। मैं इसका मजनू हूँ।
0: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो।
2: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? चल कल मुझे, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ।

0: अरे अरे अरे क्या कर रही हो रहा ना, बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
1: क्या गा? ये तुम्हारी बीवी है?
0: जी हाँ, ये मेरी नई शरीक हयात है।
1: या खुदा, ये तो सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती।
0: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
1: अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो?
0: ठीक कह रहा हूँ, और आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया।
1: जहन्नुम में जाए नया और पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो, वरना मैं
0: वरना क्या
1: मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी।
0: ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
1: ठीक है, तो तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
0: हाँ हाँ, जाओ शौक से जाओ।
1: क्या मतलब?
2: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
3: लता तुम शैतान कहेंगी।
2: हाँ भाभी, मैं
3: कमबख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी ना पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
0: खामखा नहीं रहा ना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नया फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
3: चलो हटो, तुम बड़े बहु।
2: अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ।
3: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
0: चाय?
3: हाँ चाय, आपको कोई एतराज है?
0: एतराज बिल्कुल है।
2: अच्छा, मैं भी तो सुनो, आखिर क्या?
0: वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे।
3: हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी, मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में। क्यों लगा?
2: यस।

बाज आए ऐसे फैशन से, नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन।
4: 96.7 FM पर विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानू आ अमदावाद केंद्र छे। प्रस्तुत छे झरोखा, જે અંતર્ગત આપ સાંભળી શકશો અમારા આજે હવે પછીથી તથા આવતીકાલે પ્રસારિત થનારા કાર્યક્રમોની રૂપરેખા।

सात वागे भूले बिसरे गीत, सात वागे ने 30 मिनटे कार्यक्रम हम है राही प्यार के, आठ वागे ने 15 मिनटे त्रिवेणी कार्यक्रम चित्रलोक, आठ ने 30 मिनटे, नौ ने 30 मिनटे कार्यक्रम आज के फनकार, 10 वागे ने 2 मिनटे आप सांभळी शकशो गुजराती गीत, 10 वागे ने 30 मिनटे धूम मस्ती धूम दिल से कार्यक्रम नु प्रसारण करवामां आवशे, 11 वागे ने 2 मिनटे, 11 વાગીને 30 મિનિટે જૂના હિન્દી ફિલ્મી ગીતોનું કાર્યક્રમ તરન્નુમ.

0: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: मधुवंती बागची सुमंतो मुखर्जीना स्वरमा सांभळी हाउसफुल 5 फिल्मना गीतने।

जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।

0: जरूर सुनिए शाम 4 बजे पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियर हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: कुछ खट्टा हो जाए आ फिल्मना गीतने सांभळीए गुरु रंधावा जरा खाना स्वरमा।

0: आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
0: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
0: अंकलॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकलॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल

0: किया गया है।
1: एसएमई, इनोवेशन, लेबर, एनवायरमेंट एंड जेंडर।
2: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
2: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
4: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बना

0: है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title The Voice of Justice is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional ट्रस्ट।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार हैं मदन मोहन। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, धुन है मदन मोहन की, फिल्म का नाम है संजोग।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है गायक और संगीतकार मदन मोहन की मुनफरिद आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी। फिल्म का नाम आप जानते हैं, दस्तक।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में वो नगमा जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीतकार है रोशन, फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मन्ना डे, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, सुधा मल्होत्रा, SD ताबिश और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं
1: 96.7 FM पर विविध भारतीनी विज्ञापन प्रसारण सेवानुं अमदावाद केन्द्र छे. પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ ફિલ્મ સંગીત.

0: विविध भारती से। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। अनमोल होते हैं प्यार करने वालों के नगमे, सितारों से कढ़ी चूनर ओढ़कर निकली है रात की परी, तब सजी है महफिल मोहब्बत के तरानों की। सितारे करते हैं जुगलबंदी हवाओं की थाप पर, लंबी रातें छोटी हो जाती हैं इस गूंज के साथ।

रात ने हवाओं से भेजा है पैगाम आसमान के नाम, सुर्ख नीले आसमान पर फैल गई है लाली, नजर आ रही है चांद की परछाई। इस खूबसूरत फिजा में मन लिख रहा है प्रेम के गीत, कलम से झर रहे हैं सिर्फ प्यार के अल्फाज।

अंकुरी अंकुरी खिल जाता है सूरजमुखी, धूप की पहली किरण से गुलाब की पंखड़ी पर ठहरी ओस की बूंद मुस्कुरा उठती है। नरम धूप का टुकड़ा गुलमुहर सा सुंदर लगता है जब छा जाता है नशा प्यार का। छुई मुई हो जाता है मन जब मिलता है साथ चाहने वाले का।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। नींद में देखा था एक सपना कि कोई आया है नेह की पाती लेकर, कि कोई आया है अंजुरी भर प्यार का पैगाम लेकर। फिर जागती आंखों ने सजाया ख्वाब और वही ख्वाब बन गया जिंदगी का मकसद। मन में कचनार की कलियां फूटने लगी, फूल बनकर महकने को आतुर हो उठी।

जब गहराता है प्यार का एहसास, तो जैसे थके पांवों को मिल जाती है मंजिल, जैसे दिल की धड़कनों में बज रहा हो कोई साज, मौसम का हर मिजाज भला लगने लगता है, मन से मिट जाता है जमाने के लिए रंज, नजरों को इंतजार रहता है हर पल उस शख्स का जिसने लिखा है नाम मन की स्लेट पर।

कभी कभी मोहब्बत के रंग में घुल जाता है उदासी का रंग, कभी कभी ख्वाबों का रंग फीका हो जाता है, कभी कभी मिलन की घड़ियां ठहर जाती हैं, कभी कभी इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार रह जाता है। आती है याद लेकिन नहीं आता वो जिसका हो इंतज़ार।

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: 96.7 FM પર આપે ટ્યુન કર્યું છે વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું અમદાવાદ કેન્દ્ર. 11 વાગે આપ સાંભળી શકશો હિન્દીમાં સમાચાર, 11:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી.
1: આપ સુન રહે હૈ વિવિધ ભારતી રાષ્ટ્રીય સેવા, દેશ કી સુરીલી ધડકન.
2: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં રત્ના પાંડે. भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई.
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं. हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है. और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है.
2: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई. प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है.
3: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है. स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है. इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं.
2: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है. उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा. इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा. यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. निर्वाचन आयोग ने

0: हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. In a major step towards expanding bilateral trade and investment engagement, the first round of negotiations for the India-Maldives Free Trade Agreement, FTA, concluded successfully. The negotiations were held in virtual mode last week. The Commerce and Industry Ministry said both sides made substantive progress across the negotiating tracks and reached broad convergence on several issues. The Election Commission has extended the schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. According to the Commission's revised schedule, the booth level officers or BLOs will